0: जितेंद्र जी का कोलैबोरेशन कुछ फिल्मों के जरिए नजर आया है और ये तो वो फिल्म रही जिस फिल्म में जितेंद्र कपूर जी ने जिस तरह का
1: नाम गुम जाएगा
0: कैरी किया था वो भी गुलजार जी की तरह ही था
1: भूपिंदर सिंह व्हाट अ ब्यूटीफुल गाय विद ब्यूटीफुल वॉइस एंजॉय दिस ग्रेट सिलेक्शन आई प्रेम एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन विद अस हियर टुडे आई डिडंट फॉरगेट यू गाइस आई वाज हैड अ लिटिल वेकेशन बट आई एम बैक मेरी आवाज हाई पिच